सच कमावे। नानक सो तपा मुख अंतर पावे, महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले। सतगुरु नो मिले शब्द समाले, सतगुरु की सेवा ओ तप परवान। नानक सो तपा दरगे पावे मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वन त्रिण, सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण। सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई, श्लोक महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जिनके चित में परम, तिस दै दित्ते नानका ते हो जेहा तरम। अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए, तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई। महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे, उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ, सच्चा आप तकत सच्चा बह सच्चा करे न्याओ। सब सच्चो सच वर्तदा

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर।

पछाता बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता मनुख हर मंदिर की साहब न जानने तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा।

पूजा जप तप सब किछ मन्या अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्या बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे के राहे दसे अंधा होए सुजाए। होए सुजा था नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन

कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखी है जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कही है सोए पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच करती है सा सब किस सचो सच

नाम की चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंग न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

कीता, सब किछ कर ही माए है वडभागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिजाया कत गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पारे, सुई तागा सीवे, क्यों पत पाती सिक्ती।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजोग।

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निज नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरणार्थी को सच वैन सुनाई जो तो करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जान, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

अवतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा मन लागा तुस्मोहा ठग से ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा ना सोए हाथ दे आप रख व्यापै पौ।

मुल ना किद्दा मैं तू सतगुरु दुत्ता तून वजाई थी अच्छता जन्म पदार्थ नानक जित्ता पौड़ी जिसके मस्तक कर्म हुए सो सेवा लागा जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा लगा रंग चरणार बिंद

जीवद दे गुना सत पैन प्राव है पारंगत दान परीव दे नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दे लेने करे उन छत सिर कर सिस्ती अमृत पीव दे।

खतिए जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

जिन बासत नेत्र कत्या करने ही तान, जिन समुद्र विरोलिया कर मेर मधान, चौदह रत्न निकालियन की तुन चानान, कोरा की तो सहजदा जत की ओ पलान।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मले

सेवक अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग

लागे। जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे। राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाश से फर फरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा।

माया कर बारी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन इक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर धन पर तन पर ती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जी कर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माई। दया तरम अर गुर की सेवा, ए सुपन

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहुत।

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए। सिमर सिमर हर हर मन गाये, यो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात।

ही अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीहत हौं रे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कलाचित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सताओगो।

गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवे परम तत्व है। सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा। बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी

इज्जत करे तंग जो ही वाले गारे राम नाम सर तौ न पूजे असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तौ न पूजे मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

सतगुरु प्रसाद इला पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहां

तह बाजे शब्द अनाहद बाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगन अंतर बीजे, एस कला जो जाने पेओ, एते पास परम गुरुदेओ, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतर थाती, जागत रहे सुख

कोट कोट दोख बहुकी ने सब पर हर पास खरे रहाओ। हर हर नाम जपे आराधे सेवक पाए खरे।

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम त्यावे हर के भगत हरे इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नक्त महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले राम नाम जप्यो गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सब तमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिगसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दे आयो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किलबिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

नत महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन अकथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल युग विच उत्तम मत गुरमत कथा कदंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कह हो कुर्बानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

मेरे माता पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहि विसारियो रहाओ बरन चेन नहि किछ पेख्यो दास का कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महाविखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम

पूरन पूर्व है कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़।

हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत हो है पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदी।

सुरत वजी है दैदुस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुरु।

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नखीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिब चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस ना परस।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी कड कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसी है तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सच सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल न लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे।

मन सरदा कर हर तारे, मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे, जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखे ब्रह्म पसारे, एक पुरुष एक नदनी आवे, सब एका नदन निहारे, हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारे, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारे, अंतर वास बहुत मुस्काई, ब्रह्म फूला मृग सिंहारे, बन बन टूट

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

मिल सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख

विचारे निज फल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्त के तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जले गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो परम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धारियो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पाप है, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे सवागा। हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिन के चरण पखारे।

हवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तज हो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुच

जैसे पालन सरन सेंग गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कहे हर अगम अगम अगाध तुहे ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक।

ओर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा कै दीबान बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते जन नानक सब बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वचल सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पैने कामा कोठा कुर को दासारे।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई मूरख।

न कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली।

करणी कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कबहे ना जान सरे पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

जाने तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंडित नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाऊ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म ना करना।

हवर पला संसार मारू महला पहला। एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ। ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए। इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अंदिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परम गत पाई। तनत नानक अकथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता एहो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले सोम सर पोख ले जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जाए मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस नह कंद चीज है पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जाए मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस नह कंद चीज है मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा बिशन रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोद जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनया तन निगुरिया गुर निमाणिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

त्रैमण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंज

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फे सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हौ मैं जलिया मनो विसारे।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे, दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे, भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत, गुरमुख नाम तरे रहाओ कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे, गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे, बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नरहरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई, साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए, गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गंगंदर बे जप्यो रिख बपुरे हर गाया, शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया, नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख, सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख, गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ, हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख, तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख, मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन।

जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो। हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े जप हर हर नाम छड़ावे जियो। रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विकाटे हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो हर चलदिया नाल सखाई जियो। जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर न जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डर पे तरत आकाश नखत्रा सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पे सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे अत डर पे धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे। रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे। बिदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे। कवन पराद बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रम्यो बहु पांते अनक जत

ए विद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ, मांगन को दान आए। त्यागो सगला मान मैं

जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा। खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाय। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई। निरपो पए सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई। मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारयो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो। लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो। रहाओ असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो। प्रभ विसरत महा दुख पायो एहु नानक तत विचारे हो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावत। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन बिद पार पराए त्याए हर जियो होए मृतक त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू।

था। अनुपौ अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई, कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म, मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तैं अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो परगास।

सच बैठता सच स्वाओ बनाया, सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया मारू मैला पंजवा।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूंच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्याया।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

एक शंकर गादी गढ़ है, एक सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन फैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया, होए अवतूत।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसियो गीता के, साध संग पै जन्म के, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते बिरथा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब तकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जी।

नानक ताकै बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्तु सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

सारा अनेक दुख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए। प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी। प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप के काडन हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही। नाम दिल मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा कत कौ डह का।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम के आई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है, है होसी आहे दया मोह की जय देवा। नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा, पतित उधारन तारन बल बल बले बल जाये। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर त्याय। मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा, यहा ओट आधारा।

अतल अथयो देवा मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए जा को नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो तेखत सगल त्यानो तजो मन ते अभिमानो ने चल तिनका ठाणा गुर ते मैल पछाणा आम दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू मैला पंजवा कर छीवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा मिल साध त्याग गुमान और सब किस मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम राव दुख दीन ना पाओ व्यापे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते एहने मेरे मन ना

सूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभु नहार मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसें प्राप्त नाम ते

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीक साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ। पंथ ताक कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पवाई जोनी, रहन न कितनी थाए।

तुमरो प्रदान है कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाता थाने आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्रा

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो गनकाहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई। मारू मैला नावा अब मैं कहा करो री माई, सगल जन्म विक्रम से खोया सिमरियो नायक नाई रहाओ। काल फांस जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाई। जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई। मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागियो, माया के मद जन्म सिरायो राम पजन नहीं लागियो रहाओ। जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत तय जागियो, कहा होत अब कै पछताए छूटत नाहिन भाग्यो। ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो, सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो। मारू अक्षदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद। वेद पुराण कसे सुने हारे मुनि अनेका, हर सच्ची रत बहु कहा प्रम था के देखा। साचो साहिब निर्मलो मन माने एका, तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी। नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहा, हर पढ़ी है हर बुझी है गुरमति नाम उधारा। गुरपुर है पूरी मत है पूरे शब्द विचारा, अक्षर तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा। जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति जद मत्थी है अमृत पाई है नाम निदाना। मन मुख तत न जाननी पशु माही समाना, हूं मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार। गुर कह सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार, गुरमति जग जीवन मन वसै।

कार कमावनी नित तो तापे सारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराइए गल औगुण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुरु सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौण निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सब पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाई है किसनो दीजे दोस गुरमुख गारण जे सुने मन्ने नाव संतोख मागर मच्छ पाई है कुंडी जाल बताए गुरमत फाखा पाई है फिर पछोताए जम्मन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोई ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांधिया ना बूझे विचार जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो नाई खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे

पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोची है तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे

तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरुमति खोजे नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी, खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी। सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी, सच नाम उर्धारी। नाम बिना नहीं छूटत नानक, साची तरकू तारी। मारू मैला पैला मात पिता संयोग उपाए, रखत बिंद मिल पिंड करे। अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे, गुरुमुख नाम निरंजन पाये। अफरयो पार अपार करे रहाओ, ते गुण विसर गए अपराधी। मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सदै सिर। एनिस दास समार करे, चार पदार्थ ले जग जन्मिया। शिव शक्ति कर वास करे, लागी पूख माया मग जो है। मुक्त पदार्थ मोहे खरे, तरन पलाव करे नहीं पावे। चित उत टूंडत थाक परे, काम क्रोध अंकार व्यापे। कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे, खावे पोगे सुन तो देखे। पहर दिखावे काल करे, बिन गुर सब दिन आप पछाने। बिन हर नाम ना काल टरे, जे कामो हो मैं कर पूले। मेरी मेरी करते छीन खड़े, तन तन बिन सह सह सह सहसा। फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद पया जोबन तन छुपया। कप कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे, चरण रहे कर कंपन लागे। साकत राम ना हृदय हरे, सुरत गई काली हूँ तोले। किसे न पावे रखियो करे, विसरत नाम ऐसे दुख लागे। जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख न मिटई। जन्म मरे कां को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना। बिन गुर सब दे जन्म जरे, खुशी खुआर पै रस पोगण। फोकट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूल खोयो। सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे। जां को हर प्रभ नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे। ते जग में गुरु गोविंद हरे, हर सिमरो गुरु बचन समारो। संगत हर जन पाव करे, हर जन गुर प्रदान द्वारे। नानक तिन जन की रे।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेयड़े तिर समला सौरड़े करवास सुख संबंध सुहागनी तिर पाया गुण पास लेख निहाली पटकी कापुर अंग बनाए तिर मुत्ती डोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुती निस दे हो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

मैं एक जोत दो ना हो मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना गुरुद्वारे ना पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कह पाने मन

जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचो दुरमत होवे। रंग सो नित रलिया माने, अपने कंत प्यारी जियो।

या अष्टपदियां इको ओंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या तू उर्जायो रहाओ रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर

जम कंकर किछ ना कही, मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा पंडार, जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार, दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे, रिद्ध सिद्ध नव निद जाके अमृता प्रवाह, आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार, अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन कोट दान स्नान, बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास, बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास, मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन न कीनो रोस, काज ओआ को

देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर ने व्यापैखने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर प्रगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवां कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंत।

हर कीर्तन में जागना, लागना लागन नीका गुरचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पाजना, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रहे अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने कट कट राम हे आलिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौ मन माही, किस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजनहार है लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आए है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है, पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी

होर न दिसे वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर देखू लिवलाई है मारू महला पहला दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर बिन फिर नींद न पाई है अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुरु सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अंकार निवारे सत्सर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामने समाई है माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जमन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देखे दुख दर्द शरीरों जाई है निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुबर आत्म राम सखाई है मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना पर थाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है आप उपाया जगत सवाया जिन सिरिया तिन तंदे लाया सच्चे ऊपर।

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे।

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुरपूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे ना

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे।

लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगे पैदे गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बित्रे दुख पाई है भोजन साच मिले।

तरफ न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यो बणत बनाई है, सब की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हें उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ये बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, जिह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछाहारा, साकत कूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पर आई, पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हौ मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर देले।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवै चलाए, तिसे सरीत ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा।

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन खीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे चूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगती बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी मंदा आँख न चले, सच खरा सच यारा है, साच बिना दर्श जे न कोई, साच शब्द कैजे पत होई, आपे बख्श ले तिस पावे, हों मैं गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की विद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा है, मारू मैला पहला, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सो अंतर दाना बीना है, गुर सर्वर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाओ अगाध निराला, हर अंत न पाये गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है, सतगुर बाजो मुक्त किनेही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगे मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे, सतगुरु दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए, अमृत रख पाए, जम जागात नाही कर लागे।

चना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआरा।

दुख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे जिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर

जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजै पर पर पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

साकत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है।

आए नानक हर जप हर मन मेरे हर मेले मिलन हारा है मारू मेला पहला कर रहो रे मन मुग्ध याने राम जपो अंतर्गत प्याने लालच छोड़ रचो अपरंपर क्यों पावो मुक्त द्वारा है जिस बिसरिया जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखा फुन आ गए राम नाम जप गुरमुख जीड़े एहो परम तत्व विचारा है हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा एनस राम रहो रंग राते एहो जप तप संजम सारा है राम नाम गुरु बचनी बोलो संत सभा में ए रस टोलो गुरमत खोज लहो कर अपना बौड़ना गर्भ मजारा है हच तीरथ नावो हर गुण गावो तत विचारो हर लिवलावो अंतकाल जम जोहे न साके हर बोलो राम प्यारा है सत गुरु पुरख दाता वरदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना जिसको सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम पै पारा है पंच तत मिल काया कीनी किसमें राम रतन लैचीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाये शब्द विचारा है सत संतोख रहो जन पाई खिमा गहो सतगुर शरणाई आत्म चीन पर आत्म चीनो गुर संगत के वो निस्तारा है साकत पूर कपट मह टेका हैनत निंदा करे अनेका बिन सिमरन आवे फुन जावे गर्भ जोनी नरक मजारा है साकत जम की कान न चूके जम का दंड न कबू मुके बाकी तर्म राय की लीजे फिर अफरियो पार अफारा है बिन गुर साकत कहो को तरिया हो मैं करता पव जल परया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिये पार उतारा है गुर की दात न मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपर अपारा है गुर ते फूले आवो जावो जन्म मरो फुन पाप कमावो साकत मूर अचेत न चेते दुख लागे ता राम पुकारा है सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दात

दिए, किसको दोष दे तू प्राणी। सो अपना किया करारा है, हो मैं ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी करत क्याले चाले, बिखला दे छार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे सब निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत्व करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, तिव मन पी जय शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक की जय, अंतर चोर मुह कर मंदर, इन साकत दूत न जाता है, दुंदर दूत पूत पी

राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभु सोई। राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलल सलल मिलाता है। फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। इस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है। गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने। सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन। एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चक्र तरे विचारे, आपे करता कर कर।

मस्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना, लेके वड

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है सब का लाहे सुन सुन आखे आपे दाना सच पराख है जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरुमुख सब चलाहा है सुन सुन आखे कीर्ति बाणी सुन कहिए को अंत न जाने जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस्थर पर मरना कृत पया सिर सहा है संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए दुख सुख ही ते पे निराले गुरुमुख सील सनाहा है नीचे साचे के व्यापारी सच सौदा ले गुर विचारी सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द पचे ओ महा है काची सौदी तोता आवे गुरुमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रात सलामत।

तारा डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने से

मेरा कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे परवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिज मंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप दनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परवाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ बिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पच्छो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा, मारू मेला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा, खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओपत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा, ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेत नहीं खैकाला, नरक सुरग नहीं।

पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाणे दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावन ना को पूजा लाएदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मसाई कहाजी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्ण महेश उपाय माया मोह वधाएदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता

नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पै गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे दसवें वासा अलख अपार है सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंगा रब सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंगा गर्म है हाथ पटनवा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुरु मिले मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन न पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा। सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा।

साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्म ने मुख माया है त्रै गुण ताकी कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सप्त पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनों कृपा करे हर गुरुमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरुमुख समझे रोग न होई हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगे जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परिघासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोई मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को न्यो कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा आशा मनसा

अंदर जुगत समाई रहे निरालम राया, जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया, ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया, त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक द्रासा, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे, नानक रेण संत जन संगत।

में पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना, नानक खोज लहो कर अपना, हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना, अदल करे गुरु ज्ञान समाना, काम क्रोध ले गर्दन मारे, हों मैं लोभ चुकाया, सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पछाने सब विचारा, सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहद वावे।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फाती, नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभ तारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग करना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाए जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग करना, अकत कठ है देखे अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मा बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कह कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पग दुतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपुरे देखाया, सतगुर मिलो आप

ते तीरा दुकट कट पौ पंजन पाई है बाहर जन्म ना जाया भगत हेत गुर सब तरंगा हर जत नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सवाया जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जमकंकर काल सेवक भगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय अंतर की दुबदा अंतर जरिय पंच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला सुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुर जाने सो निरपौ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वसया एनक नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों सारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाया हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्ते ताक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम ते आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गै जस गाया सत गुर मिले ता महल बुलाए साची दर गै गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा दिखिया मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसा दुख बिना सन सेवो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वडी आए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्ते नानक हर गुर पाया वाचे पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत ने

नानक आत्म राम सभाया। गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाए, कर कर वेख है अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले दे वड्याई।

कीमत पाई, मनमुख बहुत सुरै दिल लादी, दूजे पाए खुआई है, हो मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है, गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है, सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार पगती राता, सहज मते बन आई है, दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है, आपे गुरुमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सतगुरु सेवे, जरा जम तिस जोहे न साचे, साचे स्यों मन आई है, कृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेवन सेवद पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हो मैं विच्चों जाई है, गुर ते बुझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है, आपे आप मिले ता बुझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, वाणी शब्द बजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

सच्चा पासारा होरन हुक्म ना होई है। आपे लाए ले सो लागे गुर प्रसादी जम का पौ पागे अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझे कोई है। आपे मेले मेल मिलाए पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए हम दिन भगत करे दिन राती गुरमुख सेवा होई है। सतगुर सेव सदा सुख दाता आपे आए मिलिया सबना।

मिल प्रीतम सुख होई है, मन मुख तात दूजा है लागा, जन्मत की नाम वो अपागा, आवत जात बिरसा जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है, काया कुसुद हो मैं मल लाई, जे सो तो वे ता मैल न जाई, सबर तो पै ता अच्छी हो वे, फिर मैली मूल ना होई है, पंच दूत काया संगारे, मर मर जम में शब्द ना विचारे, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है, एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया वड पागे, अंतर साच रहे रंग राते, सहज समावे सोई है, गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रसचा कह सच सोई है, हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है, बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हम मैं शब्दे खोई है, आते गुण

साचे ते पत होई हे। मारू मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक पत गवाई नाम रते परमहंस बैरागी। निज कर तारी लाई है शब्द मरे सोई जन पूरा। सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा। मन पीवे पाए सुवाई है पढ़ पंडित अवरा समझाए। कर जलते की खबर न पाए बिन सतगुर से वे नाम न पाई है। परखा के सांत न आई है एक पसम लगाए फिर पेक तारी। बिन शब्द हूँ मैं किन मारी हम दिन जलत रहे दिन राती। परम पेक परमाई है एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी। शब्द मोए हर नाम निवासी हम दिन सदा रहे रंग राते। पह पाए पगत चित लाई है।

सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है, एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभु क्यों फुरमाई है, सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है, हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जब मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है।

दरसा कह पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सबको जासी दूजे पाए बांदा जम फांसी सतगुरु राखे से जन उबरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख है जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान किस सब कि है अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जमे जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साथ समाई है संदे ताबत मन पया मनहूरा।

सीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है। अवगण्यारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे। फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुरु बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे। गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब लेखे इकना बख्श ले तुर लेखे। हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे। आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे। सतगुर सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह।

करे न पाए, बिन सदगुरु सुख न पाए है। किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावे तित राह चलाए। आपे मेहरवान सुखदाता, ज्यो पावे तें चलाई है। आपे करता आपे पुगता, आपे संजम आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता। एक है गुप्त प्रगट है आपे, गुरुमुख परम पहु जाई है। गुरुमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सत्साला ही गहर गंभीर है। सब जग है तिस ही कैचीर है, सब कट भोग वै सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुरु प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या कट अंतर। टूटी जम की फांसी है, किस सेवी तै किस सलाही। सतगुरु सेवी शब्द सलाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम। अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा। बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझे, जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित कट हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे, हर गुण गावे अंदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर, रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवर न पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है। परम परम जोनी फिर आया, आप पूला जा खसम पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे, चीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पाथर मेल ले हो तुम, आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा, आपे करे करावे तो होएगा। आपे बख्श ले सुख पाए, सभी नाम निवासी है। तिर तन धरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज अपारा। सच तन जमया कोट ना आवे, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय। आपे बख्श ले नाम दी जय, गुरमुख हो वै सो पत पाए। इकत नाम निवासी है, अंतर हर तन समझ ना होई। गुरु प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख हो वै सो तन पाए। सभी नाम निवासी है, अनलवाओ परम पुलाई। माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधे किछु न सूझे। गुरमत नाम प्रगासी है, मनमुख हो मैं माया सूते। अपना कर न संभाले अंत बिगूते, पर निंदा करें बो चिंता जाले। दुखे दुख निवासी है, आपे करते कार कराई। आपे गुरमुख दे बुझाई, नानक नाम रते।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वड्याई, गुरमत एवं मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी।

दुआ श्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जाए। गुर के शब्द सा जन सो है नाम रसायन एव मनमो है। माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जाए। सब नाम विच वरते एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। हूँ मैं मार सदा सुख पाया नाई पाके अमृत पी जाए। किलविख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किश आपे आप वरते गुरमुख तन मन पी जाए। माया अगन जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे। अंतर सांप सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जाए। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे। सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जाए। मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत शांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी त्रैगुण बद्धक मुक्त निरारी। गुरमुख ज्ञान एको है जाता हम दिन नाम रवि जाए। वेद पढ़े हर नाम न बूझे माया कारण पर पढ़ लूजे। अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर करी जाए। वेद बाद सब आँख वखाने ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने। उन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पी जाए। आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अव

सच्चे सच्चा सत रचाया निज कर वस्या तिथे मोह न माया सद ही सात वस्या कट अंतर गुरमुख करनी सारी है सच्चा सौदा सचवा पारा ना तिथे परम ना दूजा पसारा सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे बूझे को ही चारी है सच्चे लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड़

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एको जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सा।

पूजें इतना गुरुमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई। नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक हो जाता है। जिसनो नदर करे सो पाए, साचा शब्द।

आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा, आपे

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मति पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरुमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, हो सच सेव्यो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाय, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगैता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी ते नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इक

घट होई खबर सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या वेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की

किया आकारा गुरुमुख पसरिया सब पासारा गुरुमुख होवे सो सठ बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है गुरुमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता गुरुमुख मरे ना जन्मे गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाहा है गुरुमुख नाम शब्द साला है।

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मुख साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुरु

लाबू जै कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाई है पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरतै एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है दींदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रा पै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सब दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुरु कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुरु कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुरु कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुरु सेवा ते सब कुछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुरु कै शब्दे सोहा है, गुरु का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया तो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

सदा त्यायन गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निध नाम वस्या सठ अंतर छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

कहूँ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन सह नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

पहला तीजा गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएदा गुरमुख मनुआ उल्ट परावे गुरमुख बाणी नाद बजावे गुरमुख सच रते बैरागी निज करवासा पाएदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चे सबदे सच तुवाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे।

सत्सेव सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएदा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा। गुरुमुख हो वह मन

गुरुमुख हो वह सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी। नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

जिस विच रविया शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे जिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर के शब्द वंजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सब दे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदिर में मनु आतावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएदा।

तक अंतर रसना नाम से आएंदा, जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएंदा, जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएंदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुरु सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएंदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएंदा, इक माया मोह गर्भ व्यापे, हम होए रहे हैं आपे, जम काले की खबर न पाई, अंत गया।

सच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पछाता तुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की।

ही मत दे सो होवे, तू आपे शब्द बुझाएगा। आन दिन आर जा चीज दी जाए, रैन दिन दोए साखी आए। मन मुख अंध ना के तै मूड़ा, सिर ऊपर काल रुआएगा। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर परम गया पौ पागा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएगा। जिन तू जाता कर्म विधाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता। जत पत सच सच

ही सुख पाएगा। लख 84 आप उपाय, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विच वासा, बिस्ता विच फिर पाएगा। कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवें चलाएगा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएगा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेख है, गुरमुख आप बुझाएगा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएगा। आप निरालम होर संदे लोई, गुर प्रसादी।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूर बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाह, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो नहचो होई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दान

अंतर साज परम सुखाए सत सच्चै का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएदा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल काणी पीड़ाएदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ न आवे महल सच्चे सुख पाएदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रत

अपना पाना आप मनाएंदा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएंदा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएंदा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाएंदा, सतगुरु मेले दे वड्याई,

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही ते रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कह शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज करवासा पाएगा सबको

सब मूल है माया, दूजै पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्त कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेवे

इस बाणी ते हर नाम पाएगा, वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा, गुरमुख एक स्यो लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जान दे बिलम न लाएगा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा, मन मुख बहुत करे अभिमान, दरगह कभी न पावे मान, दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएगा।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा व्यापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए,

अंत न पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा।

खेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सो चित लाया। हऊ मैं विच सब जलै शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी

हारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोय न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माहे समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उठे सोग विजोग न व्यापे सहजे सह समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत न होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर शब्द।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हार।

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने पिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसें।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

करहे भगत अर रंग अपारा खिन मैं थाप उठा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन भगती जाहे जिस देहे दर्श सोई।

सुरत सबद रिद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जाहे, मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर पया अबना सी थी वे, ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खटकर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक सात संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तें आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे सो

गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत स्यों जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाशी।

सुखवासी बाल सुभाए अतीत उदासी अनेक रंग करे बहु पांति ज्यो पिता पूत लड़ाए दा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई तामिली है जान ले मिलाई गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा तू आपे करता कारण करना श्रेष्ठ उपाय।

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक तृप्त अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होनहारा ऊंचा अगम अथा अपारा ऊने परे परे पर ऊने ए चलत स्वामी के कारणा मुख सलाही सच्चे सा नैनी पेखा अगम अथा करनी सुन सुन।

प्रपा से आनंद मंगल हर चल तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चलत तुम्हारा।

से अंधियारे, प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे, आप छोड़ पए शरण आई, जिसका सा तिस्कालना, ऐसा कोवड़ पागी आया, आठ पहर जिन खसम ते आया।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा, सगल भगत जा की कर।

पूजै सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जा की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लाएना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुर मुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहो रलाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया।

सिमरै तरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुण तासा, पौन पानी बै संतर सिमरै, सिमरै सगल उपार जना।

सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पस पंखी सब पूता, सिमरै बन पर्वत अवधूता, लता बली साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन का प्रभ तना, सिमरै नर नारी आशर्मा, सिमरै जात जोत सब वरना, सिमरै गुणी चतुर सब बेते, सिमरै रैणी अर्दिना, सिमरै कड़ी मूरत पल निमखा, सिमरै काल अकाल।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतना।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किछु ना हुआ ता भी ना ही किछ काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

श्री रामचंद्र जिस रूप ना रेखिया बनवाली चक्र पाण दर्श अनूपया सहस नेत्र मूरत है सहसा एक दाता सब है मंगा।

खाओ अबनासी अबगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केसव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल

खपा में तुद लेप नहीं एक तिल रंगा। एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत न जाने। नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कै संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे।

मुकामे ए पंज वक्त तेरे अपरपरा सगली जान करो मोदीफा बद अमल छोड़ करो हथ पूजा खुदाए एक बुझ देवो बांगा बुरगू बरखुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो मैलाना पीर पछाणे पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना ना पाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते तोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यो कुसुम पाट क्यों पाक हरा जाको मेर मेर मेरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई शेख मसाइक हाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करण करीमा सिफत मोहब्बत अथा रहीमा हक हुक्म सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे आपे थाप उठापे साजे प्रभ की शरण गहत सुख पाये किछ पौ न व्यापे बालका गर्भ अग्न में जिने उबारिया रकत किरम में नहीं संगारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल कटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख निवारे जप हर हर पौ नहीं काल का समर्थ अकथ अगोचर देवा जी जंत सबता की सेवा अंडज जे रज से तुझ उत्पुज बहु प्रकारी पालका तिसे प्राप्त होए निधाना राम नाम रस अंतरमाना कर गहली ने अंध कूपते विरले के साल का आद अंत मद प्रभ सोई आपे करता करे सोई प्रम पौ मिटिया साध संगते दालद ना कोई काल का उत्तम बाणी गाओ गोपाला साध संगत की मंगोर वाला बासन मेट नि

तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

राती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वड पागी बहुर न जोनी पावना जिसनो बिसरे पुरख विधाता जलता फिरे रहे नित ताता अकिरत कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यों प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर।

विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहे समाए, मोल अमोल ना पाई है।

मेल मिलाई, सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई, हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला। पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए, सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

कार कमाए, नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस

प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस थाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त पहे फिर तृष्णा पुख गवाया। श्लोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी शोभावंती नार। महला पहला ससुरे पेये कंत की कंत अगम अथाओ नानक तन सुहागणी जो पावे वे परवाह। पौड़ी तख्त राजा सोभ है जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए पूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या साला ये जिस जांदे बिलम ना होई नेचल सच्चा एक है गुरमुख बूजे सो नेचल होई।

जे सत गुरु माही समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जय आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जय। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय, गुर शब्दी कमल विकासिया इव हर रस पी जय।

नानक जे इव मारिए गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे, खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हथ ना आवई जमका डंड लागे, तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदै लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ, कालर लादस सर लागणो

नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन कै मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने सुख पाये गुर सब दी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर सब दी दर जानिए अंदर महर असराओ। खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ। अमृत का रस आया मन वस्या नाओ, श्लोक मैला पहला। हों मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हों नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे, आप गया परम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसे समाहे। महला तीजा, मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिखम संसार पौड़ी। मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत न सोदनी मनमुख विगुते, बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे

जात है सब कोय। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म न जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोए जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

जे आप मारे गोविंद मैला तीजा। मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार, सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है विछोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

न लगै त्रिण। जिस होवै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण। तू होर तू पाए न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण। दखणे महला पंजवा। जे तू वत्तै अंगणे हब धरत सुहावी होए। हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात न पुछै कोई।

के सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा, पोरे पोरे रू

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड रात्रि छाया।

शिव सकत वरताइया, शिव अगै शक्ति हारिया, एव हर पाइया, एक विचों ही तुद रखिया, जो सतसंग मिलाइया। जल विचों बिंब उठा लियो, जल माए समाइया, डखने

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख नया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावै आलू दिया जिते होर ख्याल पवड़ी। हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा। गुरु भोजन पार लंघाया।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाई, बिन सतगुर मनवा न लगे, धर्म तीरा कर अंदरे यो पापी मूल न तगे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान चंद्रपा नगरी सुख घटाऊ दोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करें चंद्रायणा से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्णा तत्सार न देखं तिलक कढ़ाई स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म संवारा आपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार पुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुवावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी विचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को

जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया महला पंजवा। मतड़ी कांड कुआ पाव धोवंदो पीवसा मूतन प्रेम वथा पसन को सच्चा धनी पौड़ी। निर्भव नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए भवाई है बो जो नी नचा। बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा। वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेद धुर कर मचा। जमदूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखने महला पंजवा परबाते प्रभु नाम जप गुरु के चरण ध्याए जन्म मरण।

गरीब मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते बिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी, मेचल सच खुदा एक खुदाए बंदा अबनासी। दखने महला पंजवा दिखी अब ढंडोल, हिकस बाज न कोए, आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आसक आसा बहरा मुँह मन वड्डी आस, आस निराशा हित तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे होद, बाज प्यारे अपने बिरही ना धीरोध। पौड़ी तट तीरथ देव देवालया केदार मथुरा काशी, कोट ते पीसा देवते सन इंद्र जासी। सिमरत सासर भेद चार खट दर्श समासी, पोथी पंडित गीत कवत कवते जी जासी। जति सती सन्यासियां सब काल वासी, मुन जोगी दिगम्बरा जमै सन जासी। जोदी सह सो विनसना सब विनस बिनासी, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक फिर होसी। श्लोक दखने

понимал. सुख समुआ भोग पोम सबाई को धनी नानक हबो रोग मृतक नाम विहोनिया। महला पंजवा सुखत को तू आए पछाणु भी हिक कर नानक आस

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुरसादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आराधा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक तिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथा

ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलिया।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह क्या

वेराव वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिखिया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतर्गत हर

राम उदग दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

उदक समुद्र सरल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसह का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम त्यावेंगे। जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे।

जीड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग न

पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देव जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद चार मुकत चारे सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत। देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत। जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद। राज भीकन अधिक करयो नव निज ठाकुर दई सुदा मैं। धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस। नरसिंह रूप हो दे धर्यो नामा कै भगत बस के सब। अज हूँ बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो। दीन बिसार्यो रे दीवाने दीन बिसार्यो रे। पेट भर्यो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हार्यो रहाओ। साध संगत कब हूँ नहीं कीनी रचियो धंधे झूठ। स्वान सूकर बायस जिमें भटकत चाल्यो।

चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत थोड़ सादत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपया अघड़ घड़िया तहा अप्यो पिया मन आदि गुण आदि वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया रहा अर्ज को अर्जया सरद को सरदया सलल को सल सम्मान आया बदत जय देव।

आज काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न चीज है कागज जो गल जाएगा, जो जम आए केस जय पटके ता दिन।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे तुद बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसर खलता पैसर भार साधन बिनो करे धन बिनो करेंदी।

नानक देश जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सुख अगन पक्ष। अगन रस सुख मरिए सुख भी सो किरत नहारे। रस फिर छाया धन ताके टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए सुख तिन साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए। मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए। फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए। सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुख माए। हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सोहागन चंके फिर कै अंक समावे। बादों परम भूली पर जो बन पछतानी। जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी। बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते। प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है। मानक पूछ चलो गुरु अपने

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख ध्यावे। नानक मूर्ख अज

सत संभालिया एनक देख बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण भी सरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट था पया सो प्रभु गुरमुख जानिया करण कारण समरथ अपारा त्रिभुद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समाने आप पछाता आपे पेयड़ घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोलावड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

रहसवाया। अपरंपर आपे थापो थापे तिस भावे सो होवे। नानक हीरा हीरे बेदया गुण कह हार परोवे। गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो, सच साच समाया चूका आवन जानो। सच साच पछाता साच है राता, साच मिले मन पावे। साचे ऊपर अवर न दिसे, साचे साच समावे। मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे। नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे। सचगर खोज ले साचा गुर थानो, मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो। देवे सजदानो सो परवानो, सजदाता वडदाना। अमर अजूनी अस्थिर जापे साचा महल सिराना। दो तू चापक लेख न लिखिए प्रगति ज्योत मुरारी। नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी। तुखारी महला पहला। ए मन मेरे आ तू समझ अतीत आने आराम। ए मन मेरे आ छड़ अवगुण गुणी समाने आराम। बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरे आ नहीं मेला। क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला। मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्दा क्या करे। बंधन बांधा इन विध छूटे गुरुमुख सेव है नर हरे।

हर सिमर एक अंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है किस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत्य नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ कितना है जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया। तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा।

सफल बनी। तू जल सल मैयल भरपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनम तर हर एको एक रव्या। वन त्रिण त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या। सब चवे हर हर नाम करते असंख्य अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चव्या। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन बिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तय कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थे ओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वन।

सुन प्रभु मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी फिर के ताई जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे तू साचा साहिब साओ अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता प्राण सुखदाता गुरमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए जा को कृपा करी जगदीसर तिन साध संग मन जिता कहो नानक जीड़ा बलिहारी जियो पिंड तो दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा ठाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसै, ज्यो सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मति जित हर पाविए रे। ज्यो बछरा देख गऊ सुख माने, त्यो नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किच किच किच जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। हिलारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ, अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारे हो। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर। मांगन कौ हर दान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग त्यान, किदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप ते रोठाओ, सर्ब प्रत पाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरुष विधाते। कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ तन जोबन संपै सुख पोगवे संग न निभत मात मिर्ग तृष्णा देख रचियो बावर द्रुम छाया रंग रात मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए सात किदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत ने निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत महा परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिध में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नान

पै कलमलहान रहाओ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आशा चूत सर परमान। सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान, नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ। कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार, जिस प्राप्त होए सिमरे तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत, आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली, गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली रहाओ। गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली, प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अगन ना जली। जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली, प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे, कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे, रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे। चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे, शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

दो विवर्जत तजो मान अभिमान, लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है, ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा, कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार कहनासा, निरपव पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी, साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो, मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी। चलत कत

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे अनित जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी जात पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस अकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारत जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते कह पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जे तेजी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदेशो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा। पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

खाचा फल पाई। रे जन कैस्यों करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। रहाओ एहो अकार तेरा है तारा, खिन मैं बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा मैं का

दुविधा मरे मन का स्वभाव सदा बैरागी सब में बसे अतीत अनुरागी कहत नानक जो जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ पैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा पव जल पार उतारण हारा गुरु प्रसादी हर नाम समाल सद ही निभे तेरे नाल रहाओ नाम

सतगुरु मिलाए, नानक हृदय नाम वसाए, पैरों महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिना प्राप्त होए, हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वडियाई दे रहाओ, राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नामे मनमुख जमपुर जाए, औखे होवे चोटा खाए, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए, पैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ, अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसे मन आए, आपे वेखे वेखन हार, नानक नाम रखो उधार, पैरों महला तीजा, कल युग में राम नाम उधार, बिन नाम है माथे पावे चार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मने।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में लाती जा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जने अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिस्था जम

सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, ता तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ताते। रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरुमुख मन वसाई आप तरे सगले कुल तारे जिनी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुख दाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा

मार्ग पाए। आपे गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार, हर नाथ से नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर।

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सब ना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे, किसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैयल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

से परम पूले नर तर्क कचरायण जन्म मरण के रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत टोर सगल पराग देहे लोरो ने सो मुख जलो।

कहो कबीर इहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पचाना। कहरो महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंगयानी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी। संत संग ले

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जेसो लोच लोच खाव आया साकत हर हर चीतना आया। संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ। पात्र को बहु नीर पवाया मैं पी गए अदक सूकाया। खट शास्त्र मूर्खे सुना।

नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरों महला पंजवा, आगे दे पाछे नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द वजे दरबारे। कर कृपा प्रभु लिए मिलाए, नानक प्रभु शरणागत आए। पैरों महला पंजवा, कोट मनोरथ आ

होवै। जीवत बहुर न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहे ने काम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप। पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खत्म।

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संजम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार

पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिकसन के नित डरता फिरे, है निकट अर्थ एक न पाया, बिन सतगुरु सब

जन नानक अपर न साचे कोए, ठहरो महला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मैला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर बिनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविद रोग में बदे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन रति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता सब

निर्भय पुरुष सतगुरु प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले न तोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए, रहाओ।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होए आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख दे रात है, अमृत नाम शीतल मन गह, अनंत पगत

बेसुआ पद के किसने शरमावे, सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर है, माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुला।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुरु कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते सेई प्रधान नानक जा कै नाम धान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

स्वाद रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हों बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके कर्तव्य लखे न जाए, जाका परवासा सब कट माए,

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नुक्त न आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा

0: हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ। अहंग बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम तिराए हर हर हरे, सात जना कै संग निस्तरे। गैरी मीत होए सम्मान, सर्व में पूरन भगवान। प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया। कर कृपा जिस राखे आप, सोई भगत जपे नाम जाप। मन पर दास गुते मत लई, कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों मेला पंजवा, सुख नाही बहुते तन खाटे। सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए। सर्व सुखा हर हर गुण गाए।

जो पावे त्यों रखो गुसाई, पैरों मैला पंजवा, गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ। गुरमुख जप्यो हर का नाम, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए।

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस प्रभु

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा तै पंजन अविनाशी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी शरणा बल बल जाए।

कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किछ जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन।

नानक कै मन इहो पुरखारथ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पैरो महला पंजवा, पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की, दास के होए पूरन काम रहाओ। हर के लोग सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूरन धाम। जन का दर्श बांचे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान। कैसे संत पेटे वड़पा।

सुच हर माने, अंतर मेला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, राजमाल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए, हर के नाम बिंदर गए मिले सजाए।

आई। मन मुख मरे तिन किछु ना सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए। तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल,

जिस नाम हृदय सो पुरुष विदाता, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, नाम बिना प्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

ज्ञान कोट्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आ

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे, राम नामा जप वो करे।

के पैकरों पुकारा, नामे का स्वामी अंतर जामी, फिरे सगल बेदे सवा। राग बसंत महला पहला, कर पहला चौप दे दो

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हौ मैं सुरत विसार, हौ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान, पत परापत छाव कणी, चूका मन अभिमान, अखी कुदरत कन्नी बाणी, मुख आखण सच नाम, पत का तन पूरा होआ, लागा सहज ध्यान, महारुति आवना वेखो कर्म कमाए, नानक हरे न सू कहीं, जे गुरमुख रहे समाए। महला पहला बसंत, रुत आई ले सरस बसंत माहे।

पौ पव जल के तू टसबंद बसंत मैला पैला सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुर चरण सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मन मुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन

गुरमत ऊतम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरम पर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला।

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किछ सांझी।

जित हरिया सब जी जंत, क्या हो आखा किरम जंत, तेरा किने न पाया आद अंत। तै साहिब की करे सेव, परम सुख पावे आत्म देव रहाओ, कर्म होवे ता सेवा करे, गुरु प्रसादी जीवत मरे, अन दिन साच नाम उचरे, इन विद प्राणी दुत्तर तरे, बिख अमृत करता।

तारे गुर राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुरु प्रसादी सब समाल दर्शा चै पक्षों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनू एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे मन आए भगत करे सद वेखै हजूर मेरा प्रभु सद रहा।

नाम समाण्या गुरुमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सचोए जिन ज्ञान की आतिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक स्ञान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना

है पाए, सो बुझे जिस आप बुझाए, सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए, जिन एक जाता के जन प्रवान, नानक नाम रते दा निशान, बसंत मैला तीजा, कृपा करे सतगुरु मिलाए, आपे आप बसे।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निध पा

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नीचू का अभिमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक बखाने साच नाम बसंत महला तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साचते आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिए पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिए राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे उदारे मन बसंत तन मन

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, ए मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मो शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन बिद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सत गुर पानी शब्द सुनाए, ए जग हरिया।

मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मिलावा होए राग बसंत मैला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत त्यों कट कट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्व थाए गुर सब दी मिलिए मेरी माए रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए गुर मिलिए एक प्रगट होए एको एक रहा परपूर साकत नर लोभी जाने दूर एको एक वरत हर लोए नानक हर एको करे सो होए।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासै, पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड परम उपाव कर थाके, रिद अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीड़े किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनछे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपछे, जन्म जन्म के किल विखमल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे ज्यो बारिक रसक परयो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है। गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाई है रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह ना सकाई है, जो ओडा कूप गोज खिन काड़े, जो सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाये। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाये। बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकरे काल सुलुंज। गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तार और इद अंत।

पैसे उधारन गुरे पीर, तुम दाते प्रभ देनहार, निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान।

तरों टेक, सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित्र होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाओ जिसके तारे तरण आकाश

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट देख

जत नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिन लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

पद पाया, गुरु मिल नानक खसम तिराया, साध संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुरु मिल नानक हर हर कहया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभु जप जप जीवे तेरे दास, गुरु मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुखतनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नित रातो हर नाम रंग, रहाओ, कर कृपा

बालक राखे अपने कर साफ, सांस सहज गृह सद बसंत, गुरपूरे की सरणी आए कल्याण रूप, जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रव्याप, गुर अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास को।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन बिद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, परम तरम तुम चौपड़ साजो।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने, जिसनों कृपा

भाणा कहु नाम कितह तया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल मेला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला

के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरे दे।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, हत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे एक।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सचना

व्यापे खट खट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधू

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं।

लगे कर सिफ्त तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिले ता पूरा पाये।

जो कृष्ण बिदर कर आया मिलियो सुदामा पावनी तार सब किच आ गए दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाए जे सब साकत करें।

आपे जल अपवंतर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जले समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सो साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

राजा कब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

हर का नाम सी आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिंडे भवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई, पंजे बदे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम से आएदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नानका।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पवे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना

कते त्रुट चुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद तन सुगंध टूटे परदेश।

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछ ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूर।

आप वसै मन आए, गुरु कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर जाया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए।

मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी।

उपदेश करत नानक जन तुम को, जो सुनो तो जाए संताप, सारंग महला चौथा कर कन्या दोपदे पड़ताल इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी, मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ, हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण।

पंच शब्द वद पाग मथोरा, तीन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

प्यास तात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करें सोम पाक हिरण

गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरा कहो मैं छीक गांठरी बांदा रहाओ निस्बासुर नक्षत्र विनाशी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा।

दृष्टमान है सगल विनाशी, इक साध बचन आगादा, आपके आप ही आपे, सब आपन खेल दिखादा, पायो न जाई कहीं पाकरे।

आए जो जो शरण पर्यो करुणा निध ते पाए तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहें गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत पल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

है। गोविंद ना पगे अहंग बुद्ध माता, जन्म जू है जो हारे रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना किस्यो, पर निंदा हितकार है। छापर बांध सवार है त्रिण को, द्वार है पावक जा रहे। कालर पोट उठा।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कह हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेता किस हो।

जगदीशें खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा सारंग महला पंजवा अंदिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

पारगम त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे नाम।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संतें चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

काहे रहाओ। अनेक जन्म प्रमतो ही आयो, मानस जन्म दुलवाए, गर्भ जोन छोड़ जो निक्षो, तव लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाये आन कहो, ईत ऊत प्रभ सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे, सगल अग निमख ही है हर नाम दियाए रहाओ, सोर स्यान को बहु चतुराई, साधु शरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे तरम राय, एक कस दिन नाही को दूजा, आन न बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारंग महला पंजवा, हर जन सगल उधारे संग के, पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिनसो गोष्ठ से तरे, बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिनकी तूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे, सारंग महला पंजवा, हर जन राम राम राम से आए, एक पलक सुख साथ समागम, कोट बैकुंठ पाए।

जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई वड पागी मंथन होए विलासा।

मोहन काया वो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ गयो है हर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा रहा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाए पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर स्यों मन माना, साध कृपाल दयाल।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी।

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपैवा पारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रह बोला गुर बाँ पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहा।

दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किलविख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समरथोहं। सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण पासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श तेज सुख

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमक न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हों बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो परगासा, कट कट हर हर गीठा रहाओ, पार ब्रह्म अजोनी संगो, सर्वथान कट गीठा, पयो प्राप्त अमृत नामा।

रह बसो सगल कूफ मेरी लाथे रहाओ। कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे, एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे। नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तहारे मेरे माथे, कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण कहलाथे। सारंग महला पंजवा रे मूड़े आन काहे कत जाए, संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिखाई रहा।

तो बचन दियो मेरे सतगुर, तो मैं साज सिगरी आ रहा हो। हम भूले तुम सदा भूला, हम पतित तुम पतित उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैं लागर, लाज संग संग बसरी।

सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन में खो भई है गुर मिल हर हर।

जैसे मात पिताए तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

की जय। सुखदाता प्रभु ध्यान यह रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कवन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई वडभागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम कर।

निर्भव भय सगल पहु मिटिया, चरण कमल आधार है गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, यो जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा प्रताप रहाओ, गुर उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक मन साचा, पूरन पूरे नाद, सारंग महला पंजवा, मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, तिस गुर कह जा

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया। बां पकड़ कद लीने अपने गृह अंधकूप से माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव।

देश सगल अपियाओ सारंग मेला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस की तन हर गाय।

अच तन वन जो सच तन संचो कबहु न आवो हारे खास खर्चत किछ निकुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाए।

साध संग नानक निस्तरिय जोरा ते प्रभ निर्वाणी सारंग महला पंजवा जाते साधु शरण गहे सांस सहज मन पर।

है निर्मल बहुर जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इकरा।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे। पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ विशेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम।

सिमर सिमर नानक प्रभु जीवै, बिरस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा, तुरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर हर एक।

भगत गुण गावत गीदे होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार। चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख को।

सरना है। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख बंजन तेरे संत की रावार।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार। आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतियो, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण रास।

मानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्स प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हू राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

एक शरण गोविंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाम रूप साध संग, नानक पार ग्रामी, सारंग महला पंजवा, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचाते एक छूटा, जो साध संग पग रहो, रहाओ, दृष्टो कछ संग ना जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निधान, सगल आस पूरी।

कास्यों ने लगाई। ज्योति सैसो सगल विनाश है ज्यो बादर की चाही। तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है चिन्माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवा।

जो उपजे सो सगल विनाश है, रहन न को उपावे, मिथ्या तन साचो कर मान्यो, ए विद आप बंगावे, जन नानक सो जन मुक्ता, राम भजन चित लावे, सारंग महला नावा, मन कर कबू न हर गुण गायो, विख्या सख्त रहो निस्बासुर, कीनो अपनो भायो रहाओ।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, शुद्ध रस नाम।

अनुपौ विसर गए प्रभ जाचिया, हर निर्माइल संगी चंचल मत त्याग पौ पंजन, पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी, हर मेल ले बड़ पागी, अमृत सिंच भय सुबर सर, गुरमत सात निहाला, मन रत नाम रते ने केवल, आद जुगा दयाला, मोहन मोय लिया मन मोरा, बदे पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुख काटे, मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मैल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकथ कथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर न सू

जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कछ न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरुमुख विर ले जाने।

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जाका विस्तार, सो बाता की अपर अपार। अनेक रंग जाके गने न जाहे, सो घरक दोहू में नाहे। अनेक ब्रह्मे जाके वेद तुन करें, अनेक महेश बैस त्यान करें।

का दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

परवेशा अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थन अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

को दितिया तिना मिले पंडार। जै पंडारी हूँ गुण हितले तेकी है परवान, नगर तिना को नानका नाम।

मूर्ख अंधिया अंधी तात, कह को कहन कहाएन आप, महला पहला आखन औखा सुनन औखा, आख ना जाती आख, एक आख आखे शब्द पाखे, अर्ध उर्द दिन रात, जे क्यों होए ता क्यों दिसे, जाते रूत ना जात, सब कारण करता करे, कट औकट कट थाप, आखन औखा नानका, आख ना जापे आख पौड़ी, नाई सुनिए मन रहसिए, नामी शांति आई, नाई सुनिए मन तृप्तिए, सब दुख गवाई, नाई सुनिए ना उपजे, नामी वड्याई, नामे ही सब जात पत, नामे गत पाई, गुरुमुख नाम ति आई है, नानक लिव लाई, श्लोक महला पहला, झूठ न रागी झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की पेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाई, झूठ न मियो वरे सब थाई, झूठ न तरती झूठ न पानी, झूठ न पौने माई समानी, नानक निगुरिया।

और दर्भ चुराया, पुत्र कलत्र न विसहै, बहु क्रीत लगाया, देख दिया ही माया तो गई, पछताया पछताया, जम दर्भ दे।

रूप इतना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इतना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खारे जे दिन गुण गर्भ कर।

नानक जो देवे तुसे ना जाननी, मनमुख दुख पाई श्लोक महला तीजा। पर पढ़ पंडित मुनि थके, दे संतर पल थके पेख तारी। दूजे पाए नाव कदे ना पायन, दुख लागा अत भारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया कै व्यवहारी। अंदर कपट उदर

वस्त्र पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गनाए, नानक बिन बूझे किन न पायो, फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम, सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विछड़े कबहू, जे आप मेले करतारे, अंतर शब्द रविया गुरु।

वही नाम वसे मन आए, बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

सिमा हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी मियो उठा छे बरलाए सब तरक पाई हरियावली अनजमिया बोल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे खाए हर किसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीर्त भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख सुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपुरे की दात नित देवे चढ़े सवाई।

आप छोड़ शरणाए पवै मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रह लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

साद मन हर विमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास इको अंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्व सु

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहागरी सोग विजोग तिस्क देना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं तृप्त गवाया।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उतही ते, उतही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाए।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पराई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

मानस का फल तत्मय सासे सास गए काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

तीन बुदबुदा कैसा यो संसारा जिस ते हो आतिशे समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बच्चे तिस बिघन ना कोए रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोथी है कहे किरत फिराए सतगुरु तोतिए मन मर रहे हर नाम वसे मन

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिए, सब देकार कमाए, नानक नाम सलाम।

एक एक बसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एक नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया।

सबद सुख अंतर सदा निभय तेरे नाल राव। मन मुक्ता ठंड कदे ना चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ नाव अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे ना बूझे विस्ता मय समाए। गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्यार।

बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

मेरा प्रभु साचा दुख निवारण सब दे पाया जाए। भक्ति राते सब दैरागी दर साचा पट पाए।

अंदिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए, मलार मैला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई, सतगुर सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल कर पाई, प्राणी गुरमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया, कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे, अंतर पगते हर हर उधार, पवजल शब्द लंघावन हार, दर्शा चै गुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया, बिन गुर परम पूले बहुमाया, हों में ममता बो मोह वधाया, दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपके करता अगम अथाहा, गुर शब्दी जपिया सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम सा

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारश्मी था, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ, माया मोह अज्ञान दुवार, मन मुख मोहे मुक्त गवार, हम दिन तंबा तर्क निहाए, मर मर जम मैं मिले सजाए, गुरमुख राम नाम लीलाई, पूरे लालच ना लपताई, जो कुछ हो वह सह सुहाए, हर रस पीवे रसन रसाए, कोट मदे किसे बुझाए।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, दिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा ना जाए, सतगुर मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पूख

अंदिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दुख विसारी सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभु कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो जन हर पेटियो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर मैं तारी हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस एनस हर उधारी गुर दीखे गुर का सुख बिगसे ज्यो बारिक देख मैं तारी तम तिर का एक ही संगवासा विच हो मैं तीर्थ करारी गुर पूरे हो मैं तीर्थ तोरी जन नानक मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किल विच मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथियानी केदार खाप्यो महसारी काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब जितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगाने

नानक पाग पले तिस जन के जो हर चरणी चित लावे। मल्हार महला चौथा जिनका हियरे बसियो मेरा सतगुरु ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हों तिन कै सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा।

तिनाही हर हृदय के कपटी नरमित कपट समाक तिनको क्या कोई देख वाले ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सब संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंग दिन अंग भया।

0: इनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अंधिन हृदय नाम दिया है, सब जन पिना का सफल भया। वो आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया। तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया। जन नानक तो प्रभ कृपा धारी, दिख दुबदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय। मन मुख मूल जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई। आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई। जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई। प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले। हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा। आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी। हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन। लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया। जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया। गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृगमीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंपा कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी।

प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी हर देखे जीवत है नानक एक निमक पलो मुख लागी राग मल्हार महला पंजवा चौथ दे कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। क्या तू सोचे क्या तू चितवे क्या तू करे उपाय ताको कहो।

ए मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी ओ आया, तो मैं सब सुख पाए, संत सवा ओट गुर पूरे, फिर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक संत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मनार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह न जाई, सार समाल माता मुख नीरे, तब हो तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारिक भूख कैसी, नवनिध नाम निधान गृह तेरे, मन बांचे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना, नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना, मनार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पावन मिलियो, पगत करो निर पाए, जब प्रेह आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पै सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पै आनंदा, गुर कारज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोक जठर को परते, कृपा निध छोड़ आन को पूजे, आत्म का सी हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमय बहु जोनी, एक न काहू तरते रहाओ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुगद खल

करते नानक शरण चरण कमलन की तुम न डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

कृपाल पे बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहा मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती एहो मैं की टीठाई तई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

को पत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को तेते संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसन सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितै उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सदा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जक किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओठ जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस की जय त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल को कृपा की जय कर गह लिहो दास अपने को नानक अपनों की जय मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहा।

स्वीकार कियो मेरे स्वामी, प्रमको में सुखायो महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो, राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटिए ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय बसाए, कर कृपा प्रभ आत्म मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कहीं न जाए, कर कृपा पूर्ण

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेव

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाये वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या हो है आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाए, चात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाए, कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाए, मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाए, खिन तिल रह न सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई, तन वाडी फिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर में को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन। कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी विख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रै स्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो ते पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

पार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासाते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सब सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वर्ष है तरत सुहावी।

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर

को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाइए ते पैसे सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करें विचार मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

हर सिंह रह समाये मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुरु की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संगे

तम पंजन हर राया आचार्य स्वामी अंतरजामी मिले गुण निध प्यारिया महा मंगल सुख उपजे गोविंद गुण नित सारिया मिल संग सोहे देख मोहे पूर्व लिखिया पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की तुन इको अंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहसी है ज्यों उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल कमल विग से सच

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर

तू सच्चा मन सच महला पहला हेको पादर हेक दर गुर पौड़ी निज थान रूड़ो ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत विछोड़ चंदो आताणिया गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जेवस है चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जेवस है चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वर्ताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओठे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओठे सतगुरु बेली हो।

जो हर चरणी रह लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक

आए सच्चा साहिब मन वसे ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मुरार।

गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे, कहना किछु न जाए, हौ बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है, मनमुख बूझ न पाए, विण नामे नाल न चलसी, जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया, दूता का किछ न वसाए, श्लोक महला तीजा, बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे, चढ़े चवक गलवन, महला तीजा, बाबी हा जल में तेरा वास है, जल ही माय फिरा है, जल की सार न जान ही, का तू कूकन पाहे, जल फल चहो दिस वर्ष दाया, खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे, तिख मरे ताग तिना के ना है, नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम पियाए तुझे समाया, जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तिने वर्ताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया के सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन सबद बुझाया, श्लोक महला तीजा, इहो जल सब के वर्षवा, वर्षे पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवली।

अम तन बहुत उपजे जा सहो करे रजाए जित खा दे मन तृप्ति जिया जुगत समाए ये तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सब ही रह समाए नानक जिन को नजर करे ता इहो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो तिस पावे सोती है हुक्म करे गावार आप छदाए छुट्टी है आपे बक्षणहार आपे वेखे सुने आप सब सहदे आधार सब में एक वर्तदा फिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनो आखी है आपे देवनहार श्लोक महला तीजा बाबीहा इहो जगत है मत को परम पुलाए इहो बाबीहा पशु है इसनो बूजन नाहे अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए महला तीजा मलार शीतल राग है हर प्याए शांत होए।

आदि को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो, इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप, दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवानी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया खाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जगते की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख।

संत धन दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, बिना में बाजारिया पिहावल होई, कूड़ निखुटे नानका सच करे सोई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अवगण यार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जले हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जम काल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सबर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए। नजर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिणना में तन चार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हो तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरो खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पग कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार ना

गुरमुख शब्द समा लिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया, पुछ न सके कोई जाखस ने भाया, नानक सच सला है लिखिया पाया। श्लोक महला पहला, कुल्हा दें दे बावले लें दे वडे निलज, चूहा थद न मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई किथे जाए।

के ते मंग मंग जाहे। महला पहला, सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंज सै दाना खाए। डके फूके खेह उड़ावे, साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी, खसम मिटी फिर भानी। अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सत्ता शिव मारे सह मिर्या, सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे, साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न भावे। अक्षों प्रीत करे अक्टा, अकडाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदा।

गुर का शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार बिन प्रीति पगत में हो गई बिन सतगुरु ना लग गए प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राति काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजै नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दोय नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे।

गया जानिए कौ जल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा चै सिकदारा एना पर्याना।

एक चसे में लख सबको नथे नथिया बक्से तोड़े नथ वरना चेहना बहारा लेके बाद अलख क्यों कथिए क्यों आखिए।

अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर उत्या नानक सच्चे मेल सच्चे रत्या।

रास आप छुटे न छूटी है नानक बतन दिनास महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंदा मार होम जग किए देवतिया की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने फर कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंदेशों क्या कही है कह ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंग कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही।

तोआ आखे हो बहु विदहच्छा तो है बहुत विकारा ए तेरा सुई छोड़ हो ऐ सन्यासी नानक है विचारा पौड़ी हो क्या आखा इक जीव तेरा अंत नाक नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी मह समाया इक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुर कि न पाया देश दिसंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवागोन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहा जिन मन सच्चा भाया।

तू है मन भाया पाल चलाए बन, कोई ना रखसी जर जरवाना कन, चलिया नचसी सतगुर बोत बेर सच्चा रखसी, अगन पखे प्रहाड़ अंदिन पक्षी, फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी, करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म।

काम कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा

रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी।

बल बल साथ जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभु अपनी, हम साथ जना पद परया, तन तन साथ जिन हर प्रभु जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वत वत करिया, जो जल तंत पसारे बगत।

ज्यो साबुन कातर करया मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर धरया सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गड़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम बो

हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतित पुनीत कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ कूमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काढ़ लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पाथ काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लो तरे संग साथ तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम टूट रहे पाई नहीं हाथ तू परे परे अपरंपर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सत्संगत मिल साधु पात हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जप्यो अकथ कथकात हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई हर ब्रह्म जोग हर पाई है सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित विकार सुख पाई है हर पज संत संत संगति।

मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यो छोए पारस मन उर भय कंचन, त्यो पतित जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधा दो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है कोई, मिले गुरु गुरु नानक सो आप तरे कुल सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान मत गुरु।

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारन सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाव कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर ध्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पै दयाल सहु नानक कौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जाको सतगुरु मया करे ही अज्ञान परम बिन से दुख डेरा जाके हृदय बसे गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूँ बने।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत।

उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी।

कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कार है। कानड़ा महला पंजवा, ना जानी संतन प्रभ बिन आन। ऊंच नीच सब एक समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर, पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो, मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन को हर दान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमते, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरणाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पै कृपाला, मगन पै ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

चांद कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, पोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता।

सुखमान। काम क्रोध लोभ व्यापियो जन्म ही की खान, पतित पावन सरने आयो उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पा

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

जगत उदाहरण नाम पै तेरे, नव निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पर।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बर्त नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

पतित पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राणनाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूरन दुख विनाशन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई।

तेज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, बुन निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थाम सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले कान

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

कनक पहरे बहु कंगना का प्रपात बनावे गो नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवे गो माया पटल पटल है भारी कर कूमन केर कुलावे गो पाप विकार मनूर सब भारे विकदुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञाने लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे, तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम त्यावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। दिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नीड़ नावे दिख चार चार लिव लावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुर,

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचे नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर त्याये, बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाले, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया, जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परम।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी।

सत्संग सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे, हर बोलत सब पाप लहो गिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोए, हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए, हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए। जो हर प्रभ पावे

नानक गुरमुख हर साल आया, तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना, तू कट कट हर रंग रंगना। सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाते सब मंग मंगना। सेवक ठाकर सब तू है, तू है गुरमती हर चंग।

नाम जपत दुख जाए, जिनको पूरब लिखिया तिन मन वस्याए, सतगुर के पाणे जो चले तिन दालद दुख

मेले मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम न चेत्यो तिन जुए जन्म सब हार। गुर तुठे हर चेताया हर नामा हर उर्धार जन नानक के मुख उजले सच्चै दरबार। महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार। वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर। जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन

गुरुमति हर निरंकारा सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत उत्मा गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर

तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यागो आद सते जुगाद सते परतक सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरु मंत्र हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे कट कट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे सिखिया पाईदा सब सिस्त उपाई जी जंत हर देवो दान दयाल प्रभ हर मांगे हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आशा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी। हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वक्त है निकट सब जौला सो बुझे जिस आप बुझाए सी जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन नान

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेश हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णीय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है।

हर स्वामी हर प्रवचन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम से आया गुर बचन जप्यो मन चीत महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विटो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

सब जाए, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन, एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है, गुरु बचन सभा गै लीता। दुख दालद सबो लह गया, जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बारिक प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राम।

अंत न कत हो पाया। जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया। मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा। गुर के पग सिमरो दिन राति, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, सस चंदन जग ससिया। हर जन हर हर हर निवलाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चलियो, नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली, सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्थ अरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख।

प्रभ हर जपियो जगन्नाथ जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुढ़ते कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जाने और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमख पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीर हीर विदाइए। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी। कल्याण महला

अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। इत उत दै दिस रवयो मेर तिने समान, जत कथा तत पेखिए हर पुरख पत प्रधान। साध संग परम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान, कल्याण मह।

जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा कौन बिद ताकी कहा करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे, रहाओ नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी, अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मने मंत, तुझ बिना प्रभ किछु न जानू, सर्व युग में तुम पछानू, हर मन बसे निसबासरो, गोविंद नानक आसरो, कल्याण महला पंजवा, मन तन जापिए भगवान, गुर पूरे सो प्रसन्न भये, सदा सुख कल्याण रहाओ, सर्व कार्य सिद्ध भये, गाए गुण गोपाल, मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुख काल, कर कृपा प्रभ मेरिया, करो दिन रैन सेव, नानक दास।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरण।

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

जन हर भगवान दिखी जय। साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तांत नी जय। संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जय। सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय। अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय। मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन कौथम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरुमुख जोत

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं।

मन तन अर्थ करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

निर्मल निर्मल कर्म बहुकीने, नित साखा हरी जड़ी जय। परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बहकार बात जगदी।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब पट पट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाहु क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, पूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। आते बिलम पर

जेवद भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महा पंच बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम रामे ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला शौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान।

चित सुरख समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांका कहया दर परवान दिख अमृत दो संकर जान क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

खोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरे सतगुरु पाए पूरा नावन पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप पर गास्या पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो पै पै मांगो देह अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए।

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाचे सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करकार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

छोड़ न पावे जब लग दू जी राई। एन इस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई। कर्महीन सच पीछिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा। रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने। कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच कोए उत्तम आख न ऊंचा होए। मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार। तू बच्चे जात पत होए नानक कहे कहा वै सोए। अरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबल चाग सहज परगासिया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जमदरबा दे मारिए छूटस्था चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार। ए नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरे नीजर चरे हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रहस्य रंग सुरमाई पाई पैनन खां चीत न पाई। साथ सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

भगत करी कराही मोर, अंतर वसै चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रंगन हारा, ऐनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लास गूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल विगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदुस मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया। अत रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रब रहा प्रभु सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त मैं पीछिया जाची, एक पाए लिवलागी। रहाओ ब्राह्मण वाद पड़े कर क्रिया, करनी कर्म कराए, बिन बूझे किछ सूझे नाही, मन मुख विच्छेद दुख पाए। शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगे माने, हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साथ समाने। सगले कर्म कर्म सुख संजम, जब तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराछत काल नसे। परवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहा करे बपुरा जन बरत, गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना। रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम करावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे। सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया। राग परवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाई, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई। हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई। रहा हम दिन पगत करो दिन राती, इस युग का लोहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई। आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई। परवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे दे हो बुझाई।
हर जियो तुद विटो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ। अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुर ते पाना जापे, हम दिन सहज समाई। तेरे पाने भगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई। तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई। नानक नावे जेवड़ अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई। हरवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता। विचों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही। गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पायन।

ना तो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करें प्रतपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाहि, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाए। परवाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुख दाता।

होई। गुर कै शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई। सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया। विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विचो जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया। प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए। सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम। कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा। गुप्ता नाम वरते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया। इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे। सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे। गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे। कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक पड़े। एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्तल है। नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले। प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए। पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा। अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले। जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार। आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा। सोई तगत सुगड़ सो जाना नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान। कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा। गुर पद कारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल। खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुध पाई हों छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल।
दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत बहु पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन से आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाद बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बां दे कडबा जप मन राम नाम हर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिख्या नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम सरनवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला। प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुपान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख न विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुरु सेव होए परम गते, हरख सोग ते रह निरारा, तातु पावे प्राण पते रहाओ। काचड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई न होवे, कोट अपराध इक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बोर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहाओ। जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस लाया सोई जाने, पेख पेख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहि निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुक्ते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव। प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल। राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तहे कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी, अपने सतगुरु के बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाये, लाहा खाट होइए तनवंता, अपना प्रभु ध्याइए। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिकसग नासे, सच नाम गुरदीनी रासे, प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे,

कलेश जो तिस पावे सो फल होश तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पहर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभु गुण निधाय, कहो नानक वड पागी पाये। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाये वड पागी।

गुर पूरा पाये वड बागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। किलगित में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माय निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, ओट मदे

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान से राम ना पाया, साथ सब दे तुझ माए समाया। आवागौण तुझ आप रचाया, से भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर के ते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, हों मैं विचों सबक जलाए।

होए, सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख में तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस्याख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार,

चलिए जे बल रूप पचाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पर आया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर झूठा क्यों सुच होए, सब जीतो वह बिरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

गुर का शब्द कर्म है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एक और अब रहा सब ठाई, अवर न दी सह किस पू चढ़ाई, रहा मन तन आ गया जी।

दिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब भगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने, इहो मनु आखिन ऊप प्याली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया तित नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए।

परख खजा में पाया जात वर्ण से पै अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में न चुकाया नानक तिनके चरण पखाले।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंगल ना होए। हर मंगल हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंगल सब दे सोहना कंचन तोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरुमुख लेन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरुमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें। होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरुमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरुमुख सहज तुम उपजे। दुखों में विच्चों जाए हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने। हर राख्या उधार ऐसे ओके सुख गणा, जप हर हर उतरे पार।

तरह सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज

वेश ना पाये मह दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाई है, आप तरह सब कुटुंब तराई।

गांडा जब तब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप।

कलापी संभरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया।

मिला करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा से आमाती कुंभे हो आप ही करता भी तुल दे हो जी का बंधन कर्म भी आपे जो किस किया सो आपे आपे प्रणवत नाम दियो एहो जियो चित्वे सो लहे अमर होए सब आकुल रहे।

हृद अंतर पर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल

तिलपूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पगनाचस चित अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाथं जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

ஜனமசாவிந்தே சாகரம் சம்சார குரு பிரசாதி தரங்கே.

का विनोद सुटे। कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

रुद सहे दुखम थान बसंत पूछे मैं सिमरन मरण सदा छिते होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक की सास अकर फते।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निरत मोहं अलप बुद्धन रचंत बनता दिनोद साहन जो बन बेह कर्म कनिक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

सहनशील संतन सम्मित्र सह दुर्जन नानक भोजन अनेक प्रकारे निंदक आवद होए उपतिष्ठते।

आजा भोजंत कंद मूलं बसंते समीप के हरे तत्र गते संसारिनानक सोग हर्षं।

ਸਿਆਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਸਸ ਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ।

परम बादन अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान धृग जन मने।

करे न चित्तो, जाता अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

कटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत अर गर्बे, मूसन निमख के प्रेम पर वार वार देऊ सरबे। मूसन

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश नरक पर।

पागत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर के सो कुकिया ना सोए सारे राम।

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाले कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंग।

जीवन के पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ तो आदे भगत।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुह खाद तिरंग की ताके से खेले काठी सरसों।

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम ओईदा राती वड्डियां कुक कुक उठन पास सिज तिना दा जीविया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा जलै।

کوہڑا کڑیال جوں دکھی رہن وہائے بڈھا ہوا شیخ فرید کمبن لگی

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

सोताओ वत कुआरी नाती है कलर केरी छपड़ी आए उलते हांजे सिंजू बोलन ना पीवे उड़न संधी डंजे हंस उदर कोदर पया लोक विदारण जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां।

परिदा हर पर्याप्ति चलसी हके कवले कले फरीदा इत सिराणे तोय सवन कीड़ा लड़ियो मास केतड़े।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है। फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इती मामले सहाना इती दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

फरीदा दुखा से पीदियो गया सुना के पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े में कप

रब खजूरी पत्तियां माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उमर हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया तलियां खूंडे काज अगै सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज कागा करंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अग्गे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा ने मुहताज

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना सुतियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को तो तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उपर पाओ। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जो सिख पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है करो फाही वाल पचास, तन लहरी गड सच्चे तेरी आस। कमल को अखर कमल गुण कमल को मणिया मंते, कमल को वे सोहा करी जित वस आवे कंते। निमन को अखर खान गुण जो बा मणिया मंते, के प्रह पहने वेश कर तावस आवी कंत। मत होंगी हे आना ताण होंदे हे निताना, अण होंदे आप वंदाए को ऐसा भगत सदाए। एक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तई, ह्याओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे। सबना मन

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मर कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है। हाके बल बल बल बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल।

कै सूत है जहानी कवन उपना उपमा देओ बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो धेओ अलक अपार देओ अकल कला है सब सर्व को धान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो तेरे हो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख है, पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुन कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे सत निवास सच तपावस करयो। सच सुन जो सन

हर कारण करम समर्थ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी चापल सिमरन राम नाम रखना संगला होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महामुघुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मग्न भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल ब्याल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना। देहे न देहे

पीता माया मस्त कहाँ लोगारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय न विचारो। रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन सिन सिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन एहद करत फौज तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी। पथ पंखी बिरख अस तावर बहुत जौन भम्यो अत भारी। सिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस

गुण मर्म चार खट दर्शन ब्रह्मागत सिमरंत गुणाम गारे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत।

सत संगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौ तीरथ कल सहारे सपत दीप मझारे लैना जगत गुरु पर सुमुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञाने जाने अकलगत गुरु परवाने जाति दृष्ट अकल छाने बिमल बुद्ध सुठाने पैर शील सना।

गरल नाथ तन न थयो अम्यो अंतर्गत पियो रुद बिना सजाग्यो अलग कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लैने रसन नाम औखद नाम आधार अर नाम सम

नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो। सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है। सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है। जिस सच संजम वर्त सचे तब जन करण खाने। दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी। अमे दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल। सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

सोईनाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया। चित नाम लागते तुलसी धयावे जतन कपी।

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत दरिया सोई नाम असल भगत भाव तारन अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम धुआवे देव कैपीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

पाओ अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

चरण तपर सकयत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकयत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकयत जी गुर अमर भय जे।

सरवणी गुर अमर सुन जाए सत सो जियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत सो सुर जालप भणी जो सुर ने गुर अमर नितें।

सुपन एक पर तख एक एक समेनो तीस एक अर पंज सिदे मैं तीस नकीनो। इको जे लाख लखो अलख है

है जालपा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिखे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताके अंगद

सब संगत कुल उधर गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कलाधार जग में परवर निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करो जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

गुरु अमरदास कारण करण जिम तू रखे त्यू रहो दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान तत्सव तत्।

धर्म भण कर गयो भगत सीधे सर लड़यो। भय निर्भव हर अटल मन सबद गुण ने जाग लियो। काम क्रोध लोभ मोह

अद्भुत सेव परम पद पायो अबना से अवगत ध्यायो। इस भेटे दारिद्र न चमते कल सहारता

नाम रे निरंजन उर घरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया। जागा मन कवल सहज परगासा, अभय निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुरु प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार हृदय अंतर धारियो, दुख भंजन आत्म प्रबोध।

प्रेम भरत परवाके तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अमनो धारा रसगुत्ते मत माता संग

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृतिन जन दुख पाप कौ कत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे सब

पाए। गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, दृतन जन दुख पाप को।

ने नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके दे।

पाऊं तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकड़ खनिस सूर दिन सैर करो फल फूल।

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृद में धरे सो जन्म मरण दो ते रहे। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत।

गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोर से बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को तो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो निस्बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो। मन दास आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

प्राणियों शब्द हर हर जते नाम नवनिध आते रतन ऐनित रते सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुरु रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुर ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

सिर थप्यो हर का नाम अखेन अप्यो अप्यो हर नाम अखेन दे सौ जुग गुरु सेवा कर फलियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव

जग जन्म मरण भगाए आई ही ए परतीत, परतीत ही ए आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च भई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की दिखा गई। अवलोका ब्रह्म भरम शुभ छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु से।

करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बल

देव धीर बड़े धीर धर्म अंग अलख अधम खेल किया आपने उठाए नियो असत्य कथा।

पासा गुरमुख संगत सवे विचारो। वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेल समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत।

के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आगर, गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

जब तुम चाहे लोक प्रगा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे। तार्यो संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे सुन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़े।

बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम अपार परे। करण कारण समरथ सदा।

सुदामा खूब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। करम कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध न

बल भण मिल संगत धन धन करो, जय सतगुरु लग प्रभु पाइए सो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड़ो पासे, तांते गौहर ज्ञान प्रगत उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कव कीरत जो संत चरण मुन लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यो अंगद अंग संग नानक गुर, तिन गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो, निस बासुर हर चरण निवास, सांते संगत सगर

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो तीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद कीनी मुरा।

तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों करते खप मोए कूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर सब

बौरस साल ने सवार दी खट रस मीठे पाए। त्यों बाणी पदक सलाह दे हर नामे चित लाए। मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोच दे।

तुत पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया तित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर रस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकै कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुख।

उत्कलत मोहेत है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आई, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हौ मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा

आए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारने जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नामे जम पुर जाए, नानक बिन नामे

जिन को पूरब लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन। मन मुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास, जिस दा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास। ए मन शब्द ना पे दियो क्यों होवे करवास, मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास। गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास, हर हर नाम उर्धारिया हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास, नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास। शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई, पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई। नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई। हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सके जे सो लोचे कोई। मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आए वसे गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए, माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए। मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय, मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए। जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए, गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए। नानक सतगुर बोझे वड पागी चढ़े ते फौजल पार लंगाए। बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार, गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उर्धार। तिसना बुझे तिप्त होए हर के नाए प्यार, नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार। बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए। नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए। होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण, दिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान। सतगुरु मिलिए मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरबान। माया मोह बहु चितव दे बहु आशा लोभ विकार, मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार। वड पाग होवे सतगुरु मिले होमे तजै विकार, हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम ना

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्स पा जा गया सिर डंड लगा भोपार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए।

किछ सुझै, नानक गुरमुख मन से लुझै, जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार, ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार, मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार, नानक गुरमुख सोहणे सिस सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल, हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल, वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार, माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार, जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान, किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान, हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए, तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ, एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ, पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए, सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए, संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ, तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन, नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए, सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे, सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए, नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख पूले जाए, बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार, तिस चुके सहज उपजे चुके कूप पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखूरदार, बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए, शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए, जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए, बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किछ तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए, फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए, तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए, बाबी हे तन मन सुख होए जां तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए, अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिगार करे ओ सच रहो लिव लाए, नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए, बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊंट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाई है चूके भूख प्यास, जियो

पिंड सब चुटका सब किस किस के पास, बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आ गए की चैरदास। नानक कट कट एको वर्तदा, शब्द करे प्रगास। नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए, हर बुठा मन तन सब पर फड़े, सब जग हरियावल होए। सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए, नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए। नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए, हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होए। वडड़े चाल चलुम्बड़े नावड़ा लिये किस, नाव लिये परमेश्वर है पन्नन करण समरथ। हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण, साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार। जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान, आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार। हो मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार, वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा अंजन सदा विहान। बिन सतगुर किने न पाया कर कर सके विचार, नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार। नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान, जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना महले वेश, नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर के उपदेश। चारे कुंडा जे पवे वेद पढ़े जुग चार, नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार। नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित, मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित। गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित। पुलिया आप समझाए थी।

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मेरे सुभाए गुरमुख के मन रहसी है, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंद रह आनंद नानक सह समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन प्री विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम

संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुरु मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए उत्कलत कुटुंब है माया मोह वधाए दरगह लेखा मंगी है कोई अंक ना सकी छाए बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुरु सेवे लिव लाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए मन मुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाए वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए अंकरों को सुध माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए गुरुमुख प्रतीत पई मन मानिया अनदिन सेवा कर समाए अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरा पी हृदय रखा समाल जिना एक मन एक चित ध्याया सतगुरु सो चित लाए तिनकी दुख पुख हों मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग रह कूड़ करे आहार दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार कर्म धर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए कुवार सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए सब किस किससे होया ज्यो तिसे धीर जाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुर दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए अन दिन चिंता

सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुरु मिलाए यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम कराए गुरु सिखी पाना मन्या गुरु पूरा पार लंघाए गुरु सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुरु सिखा नो साबास है हर तुखा मेल मिलाए गुरु पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्त करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।